अवगण बड़ी तिखी छुरी मनुख दे दैवी गुणा नूं कट के नकारा करके सुट दिंदी मनुख मनुख ना रह के पशु हो जांदा औगणे आरा मनुख पशु गुणवान प्रभु अपने प्यारियां दे हिरदे च गुण वसा के तोरदा औगणा दे वस पै के बंदा थले गिर जांदा अपनी हस्ती तो नीवा हो जांदा अवगुण मनुख दे गुणा नूं कटदे ने दी हस्ती नूं कटदे ते सतगुरु अवगुणा नूं कटदे सतगुरु दे नजदीक होइए सतगुरु दे चरणी लगीए ते अवगुण कटे जांदे अवगुण कटे जांदे ने गुण निसरदे जिस सतगुरु पासों प्रभु नाल जुड़न दा उपदेश मिलदा है जिस सतगुरु पासों हिरदे च नाम वसाउण दी जाच आउंदी जिस सतगुरु ने आपां हुणे तक पढ़ रहे सां एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर ना मूआ ऐसा जीवन बख्शिया है जो टिकिया रहन वाला अटल जीवन है ऐसा जीवन बख्शिया है जेड़ा मौत तो उपर है और आप देखते हो मौत आउंदी है ते बंदे दी कहानी मुक जांदी मनुखी जीवन दी कहानी मुक जांदी लेकिन एक गुरु का सिख है जिदी जिंदगी मौत कबूलन तो बाद शुरू होंदी पहला मरण कबूल जीवन की छड आस औगण मर जांदे नकारा मनुख मर जांदा एक सच्चे मनुख दा जन्म हुंदा गुणा दा जन्म हुंदा दैवी गुणा नूं लै के मनुख उपर नूं उठदा गुरु नूं प्यारा लगदा गुरु नूं पाउंदा है संसार नूं चंगा लगदा और मेरे साहब ने ऐसी बख्शिश कीती है सानू जिवें महाराज ने पावन बाणी च किया है ना जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे तैनू पता है साडा की हाल हुंदा सी तेरे चरनी लगन तो पहला साड़ी की अवस्था सी हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे तेरे चरनी लाके असी कीड़े बादशाह हो गए सरदार हो गए मान वाले हो गए रुलते फिरते कीड़े सत्कार योग हो और ये सत्कार इत्थे भी मिलता है तेरी दरगाह विच भी मिलता है तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले है चूके सब सोग संतापे जिंदगी विचो संताप निकल गए चैन आ गया सुख आ गया जीवन में कायर हुंदे सां बहादुर बना दिता नफरत नाल भरे सां प्यार नाल भर दिता आलसी हुंदे सां उद्यमी बना दिता बुरा चित हुंदे सां सेवादार बना दिता परोपकारी बना दिता और जिसने अवगुण कट के गुण समझा के सानू इन्ने योग कीता है अमृत दियां दातां दे के नाम दियां दातां दे के बाणी दी सौगात बख्श के जीवन दा सुचज बख्शिया है साहब कहंदे ने जिन जग जीवन उपदेशिया तिस गुर को हो सदा घुमाया मैं वारने जावा उस सतगुरु तो तिस गुर को हो खनिए मैं टोटे टोटे हो जावा बलिहारने जावा उस तो जिन मधुसूदन हर नाम सुनाया जिसने वाहिगुरु का नाम मेरे हिरदे विच सुना के वसाया तिस गुर को हो वारने जिन होमे बिख सब रोग गवाया होमे वर्गे महारोग मेरे जीवन विचों कटे ने जिसने तिस सतगुर को वड पुन है ओदा कोट आन कोट धनवाद उन्हें बड़ा पुन कीता मेरे ते जिन अवगुण कट गुणी समझाया सदा ओ सतगुरु नूं चेते रखना गुरसिख दा फर्ज है ओदा परोपकार साडे सिर ते ओदी बख्शिश साडे सिर ते करजा है जिसने हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बसंड साडे मथे ते अपने अपने प्यार दा दाग ला के अपने प्यार दी निशानी ला के अपना बना के अपना रूप दिता है अपना सुचज बख्शिया है अपना प्यार बख्शिया है
ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਾਂ, ਹਮ ਕਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਹਾਂ।

कछ कथा है निरारी, तुल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती, हल्की लगे ना पारी। उस सहज अवस्था नु प्राप्त करने वास्ते गुरमुख ने एक मंजिल तय करनी, किस रस्ते ते तुरना है। गुरमुख दा अपना एक रस्ता है, उस रस्ते दिया पैड़ा गुरु नानक ने छड़िया ने। तुसा वेखिया कच्चे राहां ते एक बंदा लंघ जाए ना उहदे पैरां दे निशान पैंदे, दूजा वह बंदा जिसने वह पासा कदे ना वेखिया होवे इधर उधर झाकदा है, जिधर पैरां दे निशान नजर आउण उधर तुर पैंदा। पैरां दे निशान डबल हो जाण, दोहरे हो जाण। तीजे बंदे नूं इउं जापेगा जिवें इथों कोई एक नहीं कई जने लंघे, तीन बंदे चार बंदे लंघणगे पगडंडी बन जाए। जिसने तीन चार दे मगर लंघदियां लंघदियां उस पगडंडी ते लंघदियां लंघदियां सैकड़े बंदे लंघणगे ते राह बन जाए, जिसने हजारा लंघणगे ते शाहरा सड़क बन जाए। धन गुरु नानक ने तुहाडे वास्ते इक शाहराह दा मुढ बने, गुरमुख दे मार्ग दा मुढ बने। उस मार्ग ते गुरु नानक साहब भाई मरदाने नूं नाल लैके तुरदे ने पए, ते गुरु नानक साहब दे मगर भाई मरदाने दे मगर मगर किते राय बुलार तुरिया जांदा नजर आउंदा, किते महाराज शिवनाभ तुरे जांदे नजर आउंदे, किते भाई भगीरथ तुरिया जांदा नजर आउंदा, किते भाई बूढ़ा जी जांदे नजर आउंदे। इन्हां सारिआं ने मिल के गुरु नानक दे मगर तुर तुर के इस पगडंडी नूं शाहराह दा रूप दित्ता है। साडे वास्ते बनी बनाई सड़क है, गुरमत गाडी राह है। इस गाडी राह ते तुरन वालिआं ने एक मंजिल ते पहुंचना है। जेड़ा बंदा उस मंजिल ते पहुंचण दी तीव्रता लैके नहीं तुरदा, हौली चाले तुरदा या तुरदा ही नहीं, उस बंदे नूं सोचना चाहिए। भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने बड़ी प्यारी गल कही, वो कहिंदे ने

बुद्ध सदी पुत जो उजियारे ज्ञान की बढ़ने मनो हाथ ले ज्ञान की बढ़ने।

गुरु अर्जुन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हैं चरण छलो मार्ग गोविंद। एकेड़ा मार्ग है जिथे जीव चल के अपना लोक भी सुखी ते परलोक भी सुहेला कर सकता है। ओ मार्ग है उस्तत मन में कर निरंकार, हर वेले अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर दी उस्तुति करनी ओदे गुण गाउने, ए मार्ग है जिस करके जीव भव सागर तो पार हो सके। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पीवो। ए रचना पवित्र हो जाती है जदों नाम दा अमृत पींदी है जपदी है श्री वाहे गुरु। निर्मल रचना अमृत पीवो सदा सुहेला, कर रहे जियो नैनो पेख ठाकुर कारण। जिन्हां दे हिरदे विच नाम दा अमृत समा गया उन्हां नू फिर संसार दे लोग अकाल पुरख वाहिगुरु दा परिवार नजर आउंदे हन। जे उदा परिवार है तां एक पिता एक सिखे हम बालक, साडा एक पिता है ईश्वर और असी सारे ही उसदे बालक हां। ऐसी दृष्टि हो जाती है नाम जपन दे नाल के ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई। हजूर बख्शिश कर रहे हैं कि नैनू पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग। सत संगत विच बह के अकाल पुरख दे गुण गाउन नाल तेरिया होर माड़िया जितनिया भी आदतां हन संगतां हन वो आपे ही तेरा पिछा छड़ जानगी। आओ सारे प्यार दे नाल जपिए।

वेद व्यास जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह तो लै करके गुरु अंगद देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज, गुरु रामदास जी महाराज ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दे जीवन च चात मारी, गहरे जा करके के गुरुआं दे जीवन कैसे सन, कैसियां कैसियां सेवावां गुरु महाराज ने कीतियां अपने जीवन विच, ते फिर बई संगतां नूं प्रेरणा कीती कि ऐसियां सेवावां करन नाल वधेरे फल मिलदे हन। पाईसा पाई गुरुदास जी, गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह निमाणिया दे मान, नितानिया दे तान, नियोटिया दी ओट, नियासरिया दे आसरे, उना दे जीवन विच चात मारी ते की देखिया के भाई गुरु अंगद देव जी महाराज दी सेवा कीती, उना नू रोज इशनान करवाया, ते फिर एक दिन ऐसा आया जदों गुरु अंगद देव जी महाराज पासों अनेकां फल प्राप्त कीते। साडे देश दे विच गंगा नू पवित्र मनिया जांदा है, सनातन तो सनातन

बाबा अमरदास जी सन 72 साल दी उम्र तक अपने जीवन विच हर साल मंडली दे नाल हरिद्वार जाया करदे सन। ते हरिद्वार जा करके पाठ पूजा करनी, संतां दा संग करना, ते फिर बई गंगा दा इशनान करना। ते गंगा दे इशनान करन दा फल प्राप्त करना। एक दिन ऐसा आया, इशनान कीता, जिथे आसन लगाया सी उथे नाल ही पंडित जी दा आसन सी। पंडित जी बड़े विद्वान, पंडित जी ने देखिया बाबा अमरदास जी दे पैरां दे विच पदम है। ए पदम भगवान कृष्ण महाराज दे पैर दे विच सी। ते पंडित जी ने कहा, बाबा जी आप दे पैर दे विच ते पदम है। ते ए पदम आम मनुख दे पैर विच नहीं हुंदा। जिदे पैर विच होवे ओ या ते राजियां दा राजा बनदा है, सुल्तान बनदा है, या फिर संतां दा महान संत बनदा है, जेड़ा सारियां नू परमात्मा नाल जोड़दा है। सुन के हैरान होए, लगन बड़ी सी परमात्मा दे चरना कमलां दा ध्यान तरन दे। समा होया खान दा, ते पंडित जी ने पूछ लिया, बाबा जी आप दे गुरु कौन हन? गुरु तारन नहीं सी कीता, ते जदों इनकार कीता कि मेरा अजे गुरु कोई नहीं, ते पंडित जी ने कहा, मैं अपना जन्म प्रिष्ट नहीं करना, मैं आप दे नाल प्रशादा नहीं छक सकता। आपने गुरु धारण नहीं कीता, कहंदे हन निगुरे दा नाओ बुरा। कलेजे दे विच तीर लगा, उदास चित अपने घर वल नू पुजे। रात सारी नींद नहीं आई, ते अमृत वेला होया कि सुनदे हन के नाल दे करों भरा दे करों उना दी नूं राणी जपजी साहिब दा पाठ कर रही है। ज्यों ज्यों पाठ सुन

उस परमात्मा दा चानना हुंदा जांदा मन टिका विच आ गया। नूं राणी कोलों पुछया जा करके बच्ची ए जो पाठ कर रही है ए किसदा उचारण कीता होया है। अगो जवाब मिलिया पिता जी ए ते बाबा नानक जो कल युग दे अवतार आए संसार ते उना दी पवित्र बाणी है। उना ने कहा जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। मानो ज्ञान हुंदा गया। बच्ची दे प्रवचन सुने बाबा अमरदास जी चैन नाल कर नहीं बैठे उसे वेले जा गुरु अंगद सच्चे पातशाह दे चरना ते मत्था टेकिया। अगों गुरु अंगद देव जी महाराज ने प्यार कीता सत्कार करन लगे ते बाबा अमरदास जी कहन लगे गुरु महाराज मैं अज कुड़म बन के नहीं आया। मैं जानदा हां कि आप मेरे छोटे भरा दे सदके मेरा सत्कार करना चाहते हो पर मैं ते अज दास बन के आया हां। अज ते मैं अपनी चोली खैर पवान आया हां। मेरे ते कृपा करो मैनू अपना सेवक बना लवो। गुरु अंगद देव जी कहन लगे आप ते मालक हो घर दे मालक हो आए हो ते गुरु नानक दे घर दी सेवा करनी शुरू कर दे। देख दे देख दे बाबा अमरदास जी सारा दिन संगत दी सेवा कर दे लकड़ा टोन दे लंगर दे विच प्रशादे पकांदे संगतां नूं छकांदे ते फिर गुरु महाराज दी भी सेवा कर दे। रात पै जांदी ते सारे सेवक सौ जांदे ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ए गागर लै के ब्यास वल चल पैंदे। बाबा अमरदास जी एक दिन जदों ब्यास तो गागर चुक के पुठे पैरी आ रहे सन ते जुलाही दे ताने पेटे नाल पैर दा अंगूठा लग गया डिग पे। आवाज आई अंदरों जुलाही ने किया के कौन हो सकदा है। जुलाहे ने भी किया कौन हो सकदा है ते जुलाही ने फिर कह दिता होवेगा ओहो ही अमरू ने थावा। कहण दी देर सी इधरों अंतरयामी पातशाह गुरु अंगद देव जी महाराज नू अंतर ध्यान होए सन जेड़े पता चल गया कि अज मेरा सेवक जिसनू ने थावा किया है। इतनी सेवा करन वाला करड़ी सेवा करन वाला जिसनू ने थावा किया है उसनू ते निथाविया दे थाम होना चाहिदा है। बस भगती परवान होई सेवा परवान होई ते ज्यों ही आ करके बाबा अमरदास जी गुरु अंगद देव जी नू इशनान कराया ते इशनान करके बिठाया तखत ते वर देने शुरू कर देते। भई बाबा अमरदास जी तुसी ते निमाणियां दे मान हो नितानियां दे तान हो नियोटियां दी ओट निगत्तियां दी गत पत्तियां दी पत। पाईसा पाई गुरुदास जी ने इस सेवा नू जदों परवान होया देखिया ते फिर बई कवित दे विच कलम बद कीता इस कारण करके कि आन वाले संसार दे सेवका नू पता चल जावे कि एक गुरसिख नू इशनान करन दा कितना क फल मिल सकदा है। मगर ओ गुरसिख होवे गुरु अंगद साहिब वर्गा ते फिर कोई सेवक हो

राजा ही नहीं कोई रंक भी सेवा कर सकता है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने एक मटका लिया, एक मग लिया, ते आंदे जांदे राहियां नूं पानी पिलाना शुरू कर दिता। भाई जिथे पानी पिलाया गुरु नानक सच्चे पातशाह ने, अज ओथे गुरु नानक प्याओ दा गुरुद्वारा बनिया होया है। संगतां जांदियां हन, प्यासियां जांदियां हन, तृप्त होके आउंदियां हन, मन दियां आशावां लेके जांदियां हन, मनोकामना पूरियां करवा के आउंदियां हन। बाबा नानक जी दी इस प्रेरणा नूं ले करके, इस सेवा नूं सामने रखदे होए भाई साहिब भाई गुरुदास जी सारिआं नूं

प्यार नाल, प्रेम नाल, इतना सिमरन कीता कि मानो उस परमात्मा दी जोत नू हरी मंदर दे विच टिका देता। ते पाई साहब भाई गुरुदास जी कहंदे ने जैसे सत मंदर कंचन

तू बेअंत को बिरला जाने को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा नाना रूप तरी बहु रंगी सब तेरे निया तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सब मुन इंद्र महाशिव जो करी तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा

गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया, एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था कि हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली, यही है सर, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतने निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती गई, नीचे होते चले गए। मान मोह दोनों को पर हर

0: बाबा जी डाकू आए थे इधर बहुत आवाज आ रहे थे, चलो पीछा करो।
1: हैरानी हो रही है दौलिया, मैं जो कुछ भी कीता है इसलिए कीता है कि तू आदमी प्यारा नहीं, हालात ने तेनू तैयार गर्म करने मजबूर किया होगा। देख ले इन्हें दौलिया, जिन्हें साथियों ने तेनू इना मान सी तेनू अकलिया छड़ के नस गए।
2: तुस आज मेरी अखा खोलते सच जी।
1: दौले खां तेरे अंदर वो खूबियां ने जिन्हों सही राह से लगावे तो एक महान इंसान बन जाएगा।
2: महान इंसान यह किस तरह हो सकता है? मैं तो खौरिया किन्या के खून हाथ रंगे ने, किन्ने जुल्म किए ने।
1: परमात्मा बख्शनहार है, ऐसा ना लैन ना तेरे अंदर एक जागृति आएगी, फिर तू दौला डाकू नहीं दौलत खां फकीर रखवाएगा। याद कर खुदा नू पर करना
2: कलमा। मैं तो एक अनपढ़ गवार हूं, मैं कि जाना कलमा की हों सब।
1: अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को बंदे। बोल या अल्लाह
2: या अल्लाह
1: या अल्लाह
2: या अल्लाह।

पिंड दिया तुद आपे सारी रचना तू आप ही बनाई तुद आपे कारे लाया जेहा तू हुक्म करे तेहे को कर्म कमावे जेहा तुद तुर लिख पाया जो रचना बना के जो लेख लेके तू भेजे ओवे कोई पिया चलद पंच तत् कर तुद सिष्ट सब साजी सारी सृष्टि पंजा तत्ता दे हिसाब तू बना दी कोई छेवा करे हो जे कुछ कीता हो किसे कोल हुंदा ता है नहीं छेवा तत् इक ना सतगुर मेल तू बुझावे जिन्हां नूं सतगुरु मिल पिया उन्हां नूं सोझी आ उन्हां ने इस गल नूं समझ लिया ते जेड़े मन दे पिछे लगदे पए ने ओह रोंदे पए ने साहिब कहिंदे ने जिन्हीं पछाता हुक्म तिन कदे ना रोवना एक मनमुख करे सिर होवे मनमुख रोंदे ने गुरमुख शुक्र करदे ने।

सब कुछ अर्पण कर। पर मेरे पातशाह कहंदे ने ओना दे तन मन अर्पण करी जिन्हां ने अपना तन मन वाहिगुरु दे अर्पण कीते। फिर उन्हां ओ परचून दे मालिक नहीं हुंदे, ओ तां थोक दे व्यापारी हुंदे। थोक विच पदार्थ देंदे ने, लोकां नूं वंडदे हन, पर अपना सब कुछ वारिया हुंदा वाहिगुरु तों।

ऐसे महापुरखां दे सिर्फ दर्शन ही कीतियां ओ पाप मुक जांदे हन खत्म हो जांदे नहीं।

मनुख भगती करे जन्म मरण तो छुटकारा नहीं मिलता। पर पातशाह कहने ने बड़ा सुखैन तरीका है, महापुरुषां दे चरणा दी पूजा कर, उना दे चरणा ते सियाणपां छड़ के जदों अपना सिर रखेगा, बस बाबा जी कहने ने जवां दी मार तो तेनू छड़ा लेंगे। कबीर जी ने भी आख्या

आए उस ब्रिख हेठां आके बह गए जिथे सब तो पहला गुरु नानक दे दर्शन कीते। राय जी आ बन दे पत्ते पत्ते कोलो पुछदा है किते कोई गुरु नानक दा सुनेहा तो नहीं आया भाई। ते फिर राय जी दे नाल राय दा नौकर सी उमेदा, आख्या उमेदिया तू गुरु नानक दे घर जा पता कर कोई सुख सुनेहा आया गुरु नानक।

कालू जी राय बुलार दे पटवारी सन, आख्या मेहता जी आपनू राय जी याद करदे हैं, उस बन विच बैठे हन ब्रिक हेठां जिथे गुरु नानक दे दर्शन की।

राय जी ने आउंदे ही पुछिया, मेहता जी कोई गुरु नानक दा सुख स्नेह आया? मेहता कालू जी कहन लगे कोई नहीं आया, 12 साल बीत गए कोई स्नेहा नहीं आया। आख्या मैं ता उस वेले नू कोसदा हां, राय जी मैं अपने हाथ वाल वेख के अपने हाथ नू शराप देंदा हां के तू सुख के तीला क्यों ना होगे, क्योंकि मैं ही सां जिसने 20 रुपया दे पिछे गुरु नानक दे मुंह ते चपेड़ मारी सी। राय जी जापदा गुरु नानक हुण नहीं आवेगा। आख्या इवे ना आखो, तू बेबे नानकी जी नू खबर भेज। मेहता कालू ने आख्या बेबे नानकी नू खबर भेजी है सुल्तानपुरी, जापदा ओ भी इथे आवेगी, क्योंकि घर की हालत तो बहुत खराब है, 12 साल हो गए हन गुरु नानक नू करो गया, घर तो घर नहीं है खंडर बन चुके, क्योंकि जिस घर का चिराग 12 साल हो गए हुण बार होवे, जिस माता का इको एक बच्चा इको एक लाल होवे ते ओ भी 12 साल हो गए हुण गया होवे करो ते कोई सुख स्नेहा ना होवे, उस मां का की हाल होवे। इथे माता त्रिपता ने रो रो के अपनी अखां गवा दित्तियां, हे नानक कदों आवेगा, कदों आके अपनी सोहनी आवाज मेरे कन्ना विच पावेगा। इथे माता तृप्ता अरदास कर रही है, बेनती कर रही है कदों आवेगा बेटा, असी तेनू पछाणिया नहीं, बेबे नानकी ने तेनू पछाणिया के तू रब है, तू परमेश्वर दा रूप है, असी ता तेनू पछाण ना सके। इथे जदो मेहता कालू जी राय जी बैठे अरदास कर रहे, इथे बेबे नानकी स्नेहा पहले ही गया होया सी, बेबे नानकी रथ ते चढ़ी हुई सुल्तानपुरी तो आ रही है, सुल्तानपुर तो आ रही है, ते रस्ते विच की वेखिया, जंगल विच ब्रिख दे हेठा राय जी बैठे हन, नाल पिता कालू जी बैठे, रथ रोकिया पुत्र के आई, राय जी कहन लगा मेहता जी नानकी आ गई जे, आख्या नानकी आ गई है तो हुण नानक भी आ जाएगा, सत सगत बोलो श्री, क्योंकि स्याणे अनुमान ला लेंदे हन जे बदल आ गए हन तो बरखा भी होवेगी, आख्या नानकी जा कर मां दा हाल वेख, बेबे नानकी जदों घर आई ते घर की वेख्या, घर घर नहीं है खंडर बन चुके, आवाज दिती मां, माता तृप्ता ने आवाज पछाणी के ता नानकी है, और नानकी वेखना घर दी की हालत है, नानक दे प्यार विच मैं ता रो रो के अखां भी गवा दितियां, आज 12 साल हो गए हन नानक नु गए, ते एक एक साल विच मैं एक एक चोला तैयार कीता है नानक वास्ते, आ 12 चोले तैयार हो गए, सात सगत बोलो श्री। बेबे नानकी ने जदों ए घर दी हालत वेखी, मां दी ऐसी हालत वेखी, पिता दा ए हाल वेख्या ते कोठे ते चढ़ गए, बेनती कीती ओ वीरा तू मैनू क्या सी के बेबे जदों तू मैनू मन करके याद करेगी ना मैं तेरे कोल ही होवां, मैं 12 साल हो गए तेनू इस वास्ते याद ना कीता के खबरे मैं तेनू याद करा, ते उस वेले पता नहीं तू किस पापी ने तार रहा होवे, पता नहीं किस पुन्नी दे पुन्ना नू भाग ला रहा होवे, ते मैं तेनू इस वास्ते नहीं बुलाया, लेकिन घर दी हालत माता पिता दा हाल वेख के हुण रहा नहीं जाऊंदा, वीरा छेती घर आ। उस वेले गुरु नानक सच्चे पातशाह 2700 को दूर बैठे सन, ते जदों ए बेबे नानकी दी पुकार पहुंची, गुरु नानक पातशाह ने आख्या मर्दाने अखां बंद कर वापस चलिए तलवंडी, सात सगत बोलो श्री, ते जदों अखां बंद कीतियां अखां खोलिया
ਅੱਗਿਆਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਆਖਿਆ ਬੇਬੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਆਖਿਆ ਵੀਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮੱਖਣ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਮੈਂ ਰਿੜਕਦੀ ਸਾਂ, ਦਹੀਂ ਰਿੜਕਦੀ ਸਾਂ, ਮੱਖਣ ਕੱਢਦੀ ਸਾਂ, ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਸਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਾਂਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਖਣ ਖਾਵੇਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਖਣ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢਦੀ ਹਾਂ, ਦਹੀਂ ਰਿੜਕੀ। ਇੱਥੇ ਬੇਬੇ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਖਿਆ ਨਾ ਬਈ ਨਾ ਜਾ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਪਏ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਤਪਸਵੀ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਝੂਮਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਜਪਦੇ ਹਨ।

मैं आवांगा। आ वेखना घर दी की हालत हो गई, मां ने रो रो के अखां गवा दित्तियां तेरे प्यार दी। गुरु नानक पातशाह आए आवाज दित्ती, मां माता त्रिपता ने पछाण लिया ए तां मेरे लाल दी आवाज है, ए तां मेरे नानक दी आवाज है। भज के आई अखां ना होण करके ठोकर खा। गुरु नानक पातशाह ने अगा होके मां नूं मां दे गल ना लगे। माता त्रिपता ने आख्या, बेटा मैं तेरे स्पर्श तां कर रही हां लेकिन दर्शन नहीं कर सकती क्योंकि रो रो के तेरे याद विच मैं अखां गवा बैठी। हजूर कहन लगे, ए केड़ी वड्डी गल है मां, एक बारी अखां बंद करके खोल दे। अखां बंद करके खोलिया तां की वेख्या, चौदवी दा चंद्रमा चढ़िया होया सामने गुरु नानक पातशाह खड़े। आख्या, बेटा पिता नूं मिले के कोई नहीं, ओ तां जिस वेले रोटी खाउंदे ने एही कहंदे हन कि इस हथ दे नाल मैं गुरु नानक दे मुंह ते चपेड़ मार तां हथ विचों बुरकी डिग पैंदी है। मर्यादा पुरशोत्तम गुरु नानक सच्चे पातशाह आए, मैं तां कालू पिता दे चरणां नूं हथ लाया, चरण स्पर्श कीते। पिता कालू ने गल ना ला लिया, बेटा मेरे तो पहले ही राय बुलार नू मिल जेड़ा ओ जंगल विच बन हेठा बैठा है, गुरु नानक कूक रहे। गुरु नानक सच्चे पातशाह आए बन हेठा, की वेख्या राय जी कदे इस पासे मुंह करके बैंदे है कदे इस पासे मुंह करके बैठे। सोचद खबरे इथो ना आ जा, फिर सोचद खबरे दूजे पास्यो ना आ जावन, मेरी पिठ ना हो जाए। ताई आ सोच रिया ते पिछे आवाज आई, राय जी असी आ गए। दी आवाज सुनी राय ने परत के वेख्या, सामने गुरु नानक खड़ोता चरना ते डिग पिया। आज सारे दी पुकार गुरु नानक ने सुनी ते सारे हुण एक मन होके जप रहे हन। की कह

आज हम गुरु नानक के शरीर के दर्शन करते हैं, उनके चरणों की छोर प्राप्त होती है। कितने बड़े भाग होते हमारे, लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता है। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते हैं, भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

जानता है, गुरु सूरज के माफिक है। ये बात अलग है, हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दरवाजे खोल।

जोगी सुन ध्यान जेते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोख उपजे देने का विचार दे दे मंगे सासा गुणा सब करे संसार चोरा जारा ते कुड़ियारा खारा भावे कार ये बहुत आखे चले।

संभाले सुमनहा जिन करते करना किया चिंता भी करनी तहा सौ करता चिंता करे जिन उपाय जग इस जोहारी स्वस्थ।

राजा कूड़ पर जा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार।

मन विच वस जावे बड़िया बरकतां। वाहिगुरु दा नाम प्रभु दा नाम हिरदे च वस जावे बड़िया वडियाई, बड़ा आनंद है। ये रोने झोरे केवल उन्हां लोकां वास्ते ने जिन्हां दे हिरदे च नाम नहीं, जिन्हां दे हिरदे विच नाम है पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद है। जपदे हां, जपन दे जतना विच हां, हिरदे च वसाउण दे जतना विच हां। साडी लोड़ भी है, साडा जतन भी है। लोड़ भी साडी है कि सानू सुख मिले, ते सुख क्योंकि होर कितरे नहीं मिलदा। साडे सारिया दा प्रयोजन है कि नाम वस जावे हिरदे च, जीवन च नाम आ जावे ताकि सुख आ जावे। जो कदे ऐसा महसूस होवे ना कि मन अजे सुखी नहीं, मन अजे शांत नहीं, जो कदे ऐसा प्रतीत होवे मन विचों क्रोध अजे नहीं गया, मन अजे लोभ करता है, मन च वासनावां कायम ने, मन विच ईरखा बदस्तूर मौजूद है, जिन्ना चिर महसूस होवे समझ लेना नाम अजे जपण दे आर विच आ हिरदे च नहीं वसिया। जदों हिरदे च वस जांदा है मनुख बड़ा होर तरह का हो जाता, उदो रोमा विचो अमृत चढ़ता है, स्वाद आउंदा है। उस वेले खून दे कतरियां दे विचों भी कली कली नस विचों पूरे शरीर विचों स्वासा विचों नाम उचरिया भी जांदा है ते नाम सुनदा भी, अपने आप नूं अपने आपे विचों ते अपने आले दुआले विचों नाम दीआं धुनां प्रतीत हुंदीआं ने। इसे शब्द आपां पढ़ रहे हां ना, साहिबंच कहने नाम जीत आवे सद कीर्तन करता। कमाल की गल है, कीर्तन कितने घंटा डेढ़ घंटा तो हो गया, सदा ही कीर्तन होता रहे, ये किवें हो सकता। वो एक अवस्था है, कोई उसनू अनहद नाद की गल करता, कोई उसनू इलाही नाद की गल कह के करता, कोई किसे ढंग नाल दसता है। लेकिन यह बिल्कुल सत है कि जिसले वाहिगुरु हिरदे च वस जावे ना, जो लोर ते मस्ती पैदा होंदी, जो आनंद की अवस्था पैदा होंदी है, हर वेले ही जीवन च एक संगीत गूंजता है। हर वक्त दी आला दुआला ते मनुख दा अपना शरीर इउं ही जापदा जिवें झूम झूम के गा रहा हो। ते ना ना होवे ते जिहड़ा मर्यादा अनुसार कीर्तन असीं करने आ, कई वारी इहदी बोझ जापदा, सुनना भी बोझ जापदा, करना भी बोझ जापदा। हिरदे च ना वसे आनंद ना देंदा ते वगार जापदा, बोझ जापदा। ते शुरू शुरू विच सारा कुछ बोझ ही जापदा। मैं एक बेनती करा, बच्चे नूं स्कूल तोरने पहला आड़ी भी करदा। कोई विरले बच्चे होंदे ने जिहड़े शौक नाल तुरदे ने, दूसरिया बच्चिया वल वेख के इन्हां दा लिबास बड़ा वधिया है, उत्थे खेडदे ने, हसदे ने, नचदे ने, कईआं बच्चिया दे अंदर शौक पैदा करता जांदा है। पढ़ेगा बहुत वड्डा अफसर बनेगा, बड़ियां तरक्कियां करेगा, वह चा लैके तुरदा। नहीं तो आम तौर ते बच्चा जिहड़ा स्कूल जाण लग्गिया बहुते तां रोंदे ही वेखेगा, ओनू एक बार धक्के स्कूल पहुंचा पैदा, उथे जाके बहिंदा, एक तो जकड़ के बहना बड़ा होता, एक जो कुछ पढ़ाते नहीं ओरी समझ तो बहरा हों, पहला पहला बड़े परेशान होता, पहला पहला उसनू कूड़ा एड़ा या एबीसी या जो भी अखर है बोझ जापते। लेकिन चार दिन बाद जरा बोझ है वह ज्ञान का बोध का एक सोमा बन जाता है, फिर उही अखर मौज बन जाते, उन्हें अखर बिना नींद नहीं आती, जब तक कुछ पढ़ना लवे ओरी मन की शांति नहीं बनती। यह संसारी पद्धत की गल, धर्म के मार्ग से भी ऐसा है। शुरू शुरू च अमृत भी बोझ जापदा, नितनेम भी बोझ जापदा, बाणी पढ़नी गाउनी सुननी भी कई बार बोझ जापती। और बहुत बंदे ऐसे वेखे ने जेडे कदे कदाई इस पासे तुरन वाले ने, ना कीर्तन सुनना पै जाए, थोड़ा जि अगे पिछे हो जाए, लेट हो जाए, वासियां मारते ने, पासे मारते ने, किहड़े वेले भोग पवे जान छुट्टे, फसे जापते। लेकिन माड़ा जिहा बंदा रुचि लावे ते जिस तरह वह बेनती की है, स्कूल जाने वाले बच्चे कई ऐसे भी होंगे ने, पंद्रह बरे बोझ ही होंगे, पढ़ते भी किताबां नाल मत्था मारते भी, रोंदे दुखी होंगे, कई बार वह फेल हो जाते, तू तू के अपने आप नूं शर्मो को शर्मी दूसरे नाल तोरदे ने, चा पैदा नहीं होंगे, शौक नाल नहीं पढ़ते। फिर उन्होंने माता पिता उन्होंने आला दुआला कहते, पढ़ता तो है, पढ़ता कदा विगार करता है, तू कसीट के तुरै आ, वैसे पढ़ने वाली गल कोई। बिल्कुल इसे तरह साड़ी गल,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੇਵਲ ਕਰਦੇ, ਕਰਨ ਦਾ ਠਰਕ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਪਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸਟੱਡੀ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਸੇਕ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਭਗਤੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਜਨ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੀੜ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਲਟਕਾ ਦਈਏ, ਹਵਾ ਚ ਲਟਕਾ ਦਈਏ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਚ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਭਾ ਤੇ, ਜੀਭਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੜ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਲ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਫਲਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਇਹਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਆਖਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ ਗੁਰਪੂਰੇ ਦੀਓ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਚ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ।

दूसरा रास्ता दूसरा मार्ग ते दूसरी जुगत साहब सानू दसते ने किते जातक नू देख ले पपीए नू वेख ले जेड़ा स्वाति बूंद दे पिछे पपी पपी प्या करदे साहब बाणी विच कहिंदे ने

स्वाति बूंद से पीछे प्या तड़पता है आसमान वाल, मुंह खोल के ते पपियो पपिया प्या करदा है, तरले करदा है, जोदड़िया करदा है, मेरे पातशाह किते स्वाति बूंद मेरे मुख विच पा देवे ते मैं तृप्त हो जाऊं। सब आंदे ने प्यारिया किते एदां दी प्रीत कर लै, एदां दा स्नेह कर लै, एदां दे गुरु नाल प्यार पा लै, फिर ते तेरे जीवन दी गल बन सकदी है, नहीं ते तेरा जीवन अधूरा है।

सह उपदेश करते ने प्यारे अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। धन गुरु रामदास पातशाह हजूर कहते ने अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देव मुख लाए। नाम देव वर्गियां नू सतगुरु ने अपने हिरदे नाल ला लिया, अहंकारियां नू पिठ दे दित्ती मुख नहीं लाया। जिना नाम जपया सिमरन कीता भावे कोई वड्डा है भावे कोई नीवे, लेकिन भाई सिमरन करन वालियां नू नाम जपण वालियां नू सेवा करन वालियां नू मेरे साहब अपने गल दे नाल ला लेंदे ने। हजूर कहिंदे ने मान ना कीजै शरण परी जाए, हंकार ना कर प्यारे अभिमान ना कर, गुरु दे चरणा विच उहदी शरण विच आ जाए।

शैव फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साईं है, एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया। पातशाह तू मेरे ते कृपा कर, किड्डी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मींह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याच्छा हजूर।

गुरु नानक दी मोर ला के धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गाव बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साई कितने गुण गायन करें हजूर बाणी विच कहिंदे ने

साहब जी रचना ते इको ही है लेकिन तेरे गुण बहुते ने। भगत कबीर जी महाराज उस मालिक दे गुणा दा अथाह बयान करदे होए अपने रचना तो कृपा करदे ने ते आंदे ने।

एडी प्यास है तेरे दीदार दी, एडी आस है तेरे दीदार दी, मेरे मालिका कर कृपा मेरे दे।